परम सम्मान योग चवर शतर तख्त दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरु गुरु तेग बहादुर सचे पातशाह जी हजूर दे शहादत दिवस नाल संबंधित गुरमत दीवान दी आप जी ने हाजरी भरी है और सत्कार योग सिंह साहब जी ने सतगुरु गुरु तेग बहादुर सचे पातशाह हजूर दे अमृत बचन नू आधार बना के आप जी नाल विचारां दी सांझ पाई है। आओ धन गुरु ग्रंथ साहब जितने को सोजी समत बख्शदे ने बख्शे कोई समय विच रह के गुरमत विचारां दी सांझ पा सकीए। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर जी का अमृत शब्द जो गायन किया जा रहा सी मन रे कौन कुमत तै लीनी पर दारा निंदिया रस रचियो राम भगत नहे कीने। नाल असी बचन ए भी सरवण कीते ना हर भजियो ना गुर जन सेवियो न उपजियो कछ ज्ञाना। गुरु तेग बहादुर जी नूं पुछ लईए कि उस हरि नूं उस परमात्मा नूं भजना किवें कै किवें सिमरना कै। ते जो आरंभक तुका ने शब्द दे रहाओ दे बचन ने कि मन रे कौन कुमत तैलीनी पर दारा निंदिया रस रचियो राम भगत नहे कीनी। एक पराया तन ते एक पराई निंदिया। ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत बाणी विच अक्सर जिथे पर दारा दी गल आई है उथे पर निंदिया दी भी गल कीती गई। एदा मतलब जितना गुनाह पराए तन दे नेड़े जाने इन्ना बिना सोचे समझे किसे दी निंदिया करनी भी उतना गुनाह है। दोनां नू बराबर रखिया। हुण उस खरी परमात्मा नू किवें जपिए गुरु तेग बहादुर जी दी बाणी विच वी असीं देखणे। हजूर दे 59 शब्द ने 57 श्लोक ने 57 श्लोकां विच सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी ने खरी नूं भजन दी खरी नूं जपण दी खरी दा चिंतन करन लई वार वार श्लोकां विच कहा। पर दो उदाहरणा उन्हां ने साडे दृष्टमान संसार दियां दित्तियां जो असी रोजमर्रा जीवन विच तकने वी आ ते अपनी जिंदगी विच कई वारी ओ उदाहरणा असी नेड़े खो के देखियां ने। क्योंकि खरी नूं भजन तो बिना सिमरन तो बिना नाम तो बिना किवें अस्थिर मत आवेगी। हजूर कृपालू जी ने पहला श्लोक कहा कि ना खर भजियो ना गुरजन सेवियो संबंधी बेनती कि उस खरी नूं फिर भजिए किवें किवें जपिए। ते सतगुरु ने पहला प्रमाण दिता सी कि गुण गोबिंद गायो नकी जन्म अकारत कीन कौ नानक हर भज मना जे बिद जल को मीन। देखो पहले ते खरी भजन दी गल कही। पहला प्रमाण ही हजूर ने दिता कि कौ नानक हर भज मना कि ओ मेरे मना तू खरी नू जप तेरा जन्म अकारत जा रहा है ते जपना किवें है किदे तो पुछ के किस ढंग नाल जपना है। ते गुरु तेग बहादुर जी ने ते शब्द वरते है बिद जिस तरीके नाल
ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਮਨਾ ਜੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਿਓ ਜੋ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨੀ ਨਿਤ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਬਿਦ ਵਰਤੇ, ਮੱਛੀ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬਿਦ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलदा, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है, जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: संत पेटिया नानक मन परगास अष्टपदी
1: संत संग अंतर प्रभु टीठा
0: ना प्रभु का लागा मीठा
1: सकल समिग्री एक घट माहे
0: अनक रंग नाना दृष्टा है
1: नौ नदी अमृत प्रभु का नाम
0: यही मैं इसका विश्राम
1: सुन समाद अनहद तहनाद
0: कह न जाइए चरित विस्माद
1: दिन देखा जिस आप दिखाए
0: नानक ते दर सो जी पाए
1: सो अंतर सो बाहर अनंत
0: घट घट व्यापर है भगवंत
1: धर्म माहे आकाश पयाल
0: सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल
1: मन दिन पर्वत है पार ब्रह्म
0: जैसी आज्ञा तैसा कर्म
1: संतर माहे
0: चार कुंट दा दिसै समाहे
1: इसके भिन्न नहीं को ठाऊं
0: गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
1: वेद पुराण सिमरत मैं देख
0: सस्य सुर न खतरे मैं एक
1: वाणी प्राप्ति सबको बोले
0: आप डोल न कब हूं डोले
1: सर्व कलाकर खेले खेल
0: बोल न पाइये गुण अमोल
1: सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत
0: धार रहे हो स्वामी ओत पोत
1: गुर प्रसाद भ्रम का नाश
0: नानक तिन मैं एको विश्वास
1: संत जना का पेखन सर्व ब्रह्म
0: संत जना के हृदय सब धर्म
1: संत जना सुने शुभ वचन
0: सर्व व्यापी राम संग रचन
1: जिन जाता तिसकी एह रह
0: सत वचन साधु सब कहत
1: जो जो हो सोई सुख माने
0: कर्ण करावन हार प्रभु जाने
1: अंतर बसे बाहर पियो ही
0: नानक दर्शन देख सब मोही
1: आप सत किया सब सत
0: जिस प्रभु ते सगली उत्पत
1: इस भावे ता करे विसार
0: इस भावे ता एकंकार
1: अनक कला लखी नह जाए
0: जिस भावे तिस लय मिलाए
1: कवन निकट कवन कहिया दूर
0: आपे आप आप प्रभुर
1: अंतरगत जिस आप जनाए
0: नानक तिस जन आप बुझाए
1: सर्व भूत आप वरतारा
0: सर्व नैने आपे खनहारा
1: सगल समग्री जा का तना
0: अपन जस आप ही सना
1: आवन जाने खेल बनाया
0: आज्ञाकारी कीनी माया
1: सब कह मत अलिप्त हो रहे
0: जो किस कहना सो आपे कहे
1: आज्ञा आवे आज्ञा जाए
0: नानक जा पावे ता लय समाए
1: इससे होई सुना ही बुरा
0: उरे कहो किने कश करा
1: आप भला करतूत आत्मी की
0: आपे जाने अपने जी की
1: आप साज धारी सब साच
0: ओत पोते अपन संगराज
1: ताकि गर्मित कही न जाए
0: दूसर होए ता सो जी पाए
1: इसका किया सब प्रवान
0: गुर प्रसाद नानक हो जान
1: जो जाने ते सदा सुख होए
0: आप मलाए लय प्रभु सोए
1: ओ धनवंत कुलवंत पतवंत
0: जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत
1: धन धन धन जन आया
0: जिस प्रसाद सब जगत तराया
1: जाने अमन का यह सुआ
0: जन के संग त्यावे नाम
1: आप मुक्त मुक्त करे संसार।

वाहे गुर वाहे गुर वाहे गुर वाहे गुर वाहे गुर वाहे गुर वाहे गुर वाहे गुर वाहे गुर वाहे गुर वाहे गुर वाहे गुर वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी सतसंग जी सच्चे पातशाह जी की अपार कृपा सदका आपां नूं सतसंग दीआं कड़ियां मिलियां। कोशिश करिए कि आपां जा के सिमरन करिए, रसना दे नाल बोल के इन्हां कड़ियां दा आपां लाहा लईए। जे आपां सौं के टाइम लंघा लिया फिर अपना यह समा सफल नहीं होना, लेखे विच नहीं लगना। सो आपां कोशिश करिए कि जा के रसना दे नाल बोल के आपां सारे सिमरन करिए। सो आओ जी, हुईआं बेअंत भुल्लां चुक्कां दी माफ़ी बख्शनी, आओ आपां दुबारा फिर शुरू करिए। सारे अलर्ट हो के आपां सिमरन करिए जी।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भाओ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगादि सच हैपी सच

जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कह जय कोट इंद्र इंद्रान साहे साहान गिण जय त्रिपाउन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत।

इस पंक्ति विच अरजोई है, बेनती है, सारा शब्द बेनती है, अरदास है। कीती हुई साधना, कीता होया जप तप, वही सफल है जो मनुख नू अरदास तक ले जाए, बेनती तक ले जाए। कुछ धर्म ते ऐसे ने, जैसे ईसाई, भी चर्च क्यों जा रहे हो? प्रेयर करन जा रहे हैं, अरदास करन जा रहे हैं, सिर्फ अरदास करन जा रहे हैं। साढ़े च ऐसा नहीं, कीर्तन सुनन जा रहे हैं, कथा सुनन जा रहे हैं, गुरु दे दर्शन करन ले जा रहे हैं, सत्संगियां दे दर्शन करन जा रहे हैं, सेवा करन ले जा रहे हैं, पुण्य करन ले जा रहे हैं। ये सब कुछ कीता होया पुन, सुनया होया कीर्तन, सुनी हुई कथा, इसका फल की है अंदरों अरदास दा निकलना। वो अरदास फिर व्यर्थ नहीं जाती, बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। एक कदों निकलती है, जप कर करके निकलती है, कीर्तन सुन सुन के निकलती है, कथा सुन सुन के निकलती है, पाठ कर करके निकलती है, उंज नहीं निकलेगी। उंज बथेरी अरदासा आउंदियां ते मनुख कर, कोई रस्मी अरदास, दीवान दी अरदास, दिल दी गहराई चो अरदास निकलती है, जप कर करके, तप कर करके, साधना कर करके, कीर्तन सुन सुन के, कथा सुन सुन के, बाणी पढ़ पढ़ के, पाठ कर करके, उंज अरदास नहीं निकलती दिल दी गहराई च। और जदों ये अरदास निकल दिए फिर व्यर्थ भी नहीं जाती, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल दी गहराई चो जड़ी अरदास निकली है खुदा तक पहुंचेगी। इसे नु गुरबाणी कहती है, बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। सारे शब्द विच एक अरदास है, यक अर्ज असी अरदास कहने हैं, परशियन देच कहने ने अर्जोई करने, अर्ज करने, अर्ज करने, अर्जोई है। संस्कृत देच, हिंदी च कहने ने प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। फारसी च कहने ने अर्ज करनी है, अर्जोई करनी है। गुरु नानक ने एक शब्द नो जन्म देता है, अरदास करने है। ते अरदास दे जो मैं अर्थ समझे ने ते पढ़े ने, अर्जे दास्त हथ जोड़ के अरजोई करने, दस्त बस्ता हथां जोड़ के अरजोई करने, बेनती करने, प्रार्थना करने। सतगुर कहते ने यक अर्ज, एक मेरी अरजोई, एक मेरी प्रार्थना, एक मेरी अरदास। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, गोश कन्ना नु कहंदे ने, ऐ करतार जे तू कन ला के सुने। मनुख जिथे आंदा है उथे ही उसदे कन आंदे ने। घर विच बैठीए मां ते सानू कुछ सुनाना चाहे नहीं सुन सकदे, क्योंकि असी जिथे बैठे कन उथे ही ने। जिथों सानू सुनाया जा रहा उथे साडे कन कोई नहीं। मनुख जिथे आउंदा है उसदियां इंद्रियां उथे ही आउंदियां, उसदी जबान उथे ही आउंदी है, उसदियां अखां उथे ही आउंदियां। जिथे है उथे ते वेख सकदा है, जिथे नहीं है नहीं वेख सकदा, जिथे है सुन सकदा है, जिथे नहीं है नहीं सुन सकदा। मनुख जिथे है उहदे ज्ञान ते जद व्यापक है ते उहदा सुनना भी व्यापक है। किसे थां भी अरजोई कीती जा सकदी, किसे थां। परमात्मा व्यापक है, उदा वेखना भी व्यापक है। पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। हे प्रभु तू कन कर भाव सुन, हे करतार हे सृष्टि दे रचनहारे। एक अरजोई एक बेनती है, फिर अगलियां पंक्तियां च जिस दे अगों बेनती कर रहे ने उसकी महिमा बयान कर देना। हां जी,

0: चार दुराचारी दे विचारां च हर वक्त आउंदा है, पर दुराचार करन दे सफल उत्थे आउंदा है जिथे उसनूं मौका मिल जाए, वक्त मिल जाए। इसी तरीके नाल सदाचार रहम दे लई, भाईचारा मिठास ते दया संत दे अंदर हर वक्त आउंदी है, कृत दे च उदों प्रगट आउंदी है जिथे लोड़ पै जाए। इथे हुण दया नूं कृत देनी है, लोड़ पै गई है। वो जो विचारां च दया चल रही सी हुण सिर्फ विचारां च ना चले, उन्हूं कृत देनी है, कुछ करना है। संत दे विचारां च दया ते हर वक्त चलदी है, कृत दे च उदों प्रगट आउंदी है जिथे लोड़ पै जाए। दूसरा नुकता ध्यान नाल सुनना, चोर दे विचारां च चोरी ते हर वक्त चलदी है, कृत दे च उदों प्रगट आउंदी है जिथे मौका मिल जाए। कठोर दे विचारां च कठोरता ते हर वक्त चलदी है, कृत दे च उदों प्रगट आउंदी है जिथे मौका मिल जाए। संत दे विचारां च दया ते हर वक्त चलदी है, रहम दिली ते हर वक्त चलदी है, विशालता ते हर वक्त चलदी है, पुन ते हर वक्त चलदा है, सदाचार ते हर वक्त चलदा है। पर कृत दे च उदों प्रगट आउंदा है, तन दे तल ते उदों प्रगट आउंदा है जिथे लोड़ पै जाए, जिथे देखदा हां इथे लोड़ है। साहिब कहिंदे दिन रात विचारां दे च ख्यालां दे च बदी बदी कदी कदी कृत दे च भी प्रगट हो जांदी है, हे प्रभु मैं ऐसा हां, मेरा मन ऐसा है, मेरा तन ऐसा है। परमात्मा दे अगों अपने गुण नहीं रखे जा रहे, अरदास दे च जोदड़ी च औगुण रखे जा रहे। हां जी,
1: गाहे लाने की का करदम
0: नेकियां नूं ते मैं पकड़न दी कोशिश नहीं करदा, हे प्रभु मेरा हाल की होना है, मेरी दशा की होनी है, मेरे नाल तू की फैसला करेगा। थर हर कंपे बाला जियो, ना जाना क्या करसी पियो, क्योंकि नेकियां नूं ते मैं पकड़न दी कोशिश नहीं करदा, उन्हां दे ते मैं हाथ ही नहीं पांदा, हे प्रभु पता नहीं, हे खुदा पता नहीं मेरा की हाल होना। हां जी, आखरी पंक्तियां, बद बख्त हम चू बकील गाफल बे नजर बे बाक, नानक बगोयद जंतुरा तेरे चाकरा पाखा। बद बख्त, हे प्रभु मैं चंगी किस्मत वाला भी नहीं हां। एक नुक्ता बयान करके मैं समाप्ति करा। शिख सदी सब कहते बद बख्त कौन है, कहिंदा मैं नजूमी ते नहीं हां, ज्योतिषी ते नहीं हां, पर मैं दस सकदा बद बख्त कौन है। गर इंसाफ पुरसे बद बख्त कस अस्त, केड़ा मनुख बदकिस्मत है, बद बख्त है, कि दर राह तश रंज दीगर कर कस अस्त, जो दूजे दे नुकसान दिच नफा देखता है, जो दूजे दी बेस्ती दिच इज्जत लगता है, जो दूजे दी टेंदी कला च चढ़दी कला लगता है, जो दूजियां दे रोने दे च हासे लगता है। शेख सादी साहब कहिंदे दुनिया दा बदबख्त बंदा है कदी हस नहीं सकेगा, क्यों दूजियां दे रोने दे च हासे लगता है, कदी नफा नहीं होवेगा, क्यों दूजियां दे नुकसान दे च नफा लगता है। कहिंदा मैं ज्योतिषी नहीं हां, मैं नजूमी नहीं हां, पर मैं कह सकदा। ऐसो वास्ते गुरबाणी दा फैसला, पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। सतगुरु थे कह रहे मैं चंगी किस्मत वाला नहीं हूं, बदबख्त हूं, बदबख्त हम चू बखील गाफल। फिर मैं चुगलखोर भी हां, गल वधा के बयान करदा, जर्रे नू पहाड़ बनाना, बुराई ते जर्रा मात्र सी पहाड़ दसदा, बखील भी हां चुगलखोर भी हां, बदबख्त हम चू बखील गाफल। हे प्रभु मैं गाफल भी हां, अचेत भी हां, सुचेत भी नहीं हां, सावधान भी नहीं हां, स्याणा भी नहीं हां। बदबख्त हम चू बखील गाफल, बेनजर बेबाक, तैनू वेख सका हे प्रभु मेरे को अखां भी कोई नहीं। बेनजर हां, अंधे नू बेनजर कहिंदे ने, मेरे को नजर कोई नहीं, अखां भी कोई नहीं। बेबाक, दूसरा मैं मुंह फट बड़ा, जो मुंह चाहती है कह देना, ये नहीं देखता मौका की है, महल की है, वातावरण की है, समाज की है, और टिकाणा के ये देखदाई नहीं।